0: You are listening to Radio Amon Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: Welcome to Radio Amon 88.4.
3: बिल्कुल हरगिज नहीं है। इसके अलावा बालों की हर किस्म की बीमारी इंशाल्लाह हफ्ते भर में खत्म हो जाएगी, चाहे बाल चर है, खुश्की है, सिकरी है, रूखापन है या ग्रोथ का इशू है। अभी हमसे राब्ता करें, मुकम्मल मालूमात लें और अगर आपको तसल्ली होती है तो हमें ड्रॉप कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।

0: It's 10 o'clock.
1: It's 10 o'clock.
0: Hourly Time Check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman. You are listening to Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
3: क्या आप बालों के गिरने, खुश्की और कमजोर बालों से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़ दें, क्योंकि आ गया है डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू आपके बालों की मुकम्मल हिफाजत के लिए। कुदरती अज्जा से तैयार करदा बालों की जड़ों को मजबूत बनाए, बालों को दे कुदरती चमक और नरमी, खुश्की और हेयर फॉल में मददगार। डॉक्टर जैन हेयर ऑयल आपके बालों को इजायत फराहम करें, जबकि डॉक्टर जैन शैम्पू गहराई से साफ करके ताजगी देता है। सिर्फ चंद हफ्तों के इस्तेमाल के बाद महसूस करें मजबूत, घने और सेहतमंद बाल। अपनी खूबसूरती में इजाफा करें और अपने बालों को दें बेहतरीन केयर। आज ही इस्तेमाल करें डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू, क्योंकि खूबसूरत बाल आपकी पहचान है। तो पता याद रखिए, हमजा जनरल स्टोर, न्यू बनारस होटल, टांग सिटी। मोबाइल नंबर 0344-9363-780। व्हाट्सएप नंबर 0342-26-48-435।
4: यहाँ पर सफर हमें इस्मा वाशिंग बोर्ड चौखस्तरी इस्मा वाशिंग पाउडर मड़े में इश्मा वाशिंग पाउडर से सदा से खास खासियत थी
5: तारे खाना इश्मा वाशिंग पाउडर खास खासियत दागा दी पाउडर काम जी और बला खबर अदा कपड़े सफाई पवा लुसीना न खर पवी
6: शाम इस दी चे दम रक्षला रिजल्ट ये दाई दार तो हुई जी दाओ मोता चेरता मिला भी जी
5: तारे खाना दाओ तो दफा बने गल से अंदरून ला की गेट जान से बे गाले पर शोय मार्केट से देश मा मेन डिस्ट्रीब्यूटर हाफे जहीर से अपसार उधर ता मिला भी जी।

0: You are listening to Radio Amat Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: क्या आप बालों के गिरने, खुश्की और कमजोर बालों से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़ दें, क्योंकि आ गया है डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू आपके बालों की मुकम्मल हिफाजत के लिए। कुदरती अज्जा से तैयार करदा बालों की जड़ों को मजबूत बनाएं, बालों को दे कुदरती चमक और नरमी, खुश्की और हेयर फॉल में मददगार। डॉक्टर जैन हेयर ऑयल आपके बालों को इजाइत फराहम करें, जबकि डॉक्टर जैन शैम्पू गहराई से साफ करके ताजगी देता है। सिर्फ चंद हफ्तों के इस्तेमाल के बाद महसूस करें मजबूत, घने और सेहतमंद बाल। अपनी खूबसूरती में इजाफा करें और अपने बालों को दें बेहतरीन केयर। आज ही इस्तेमाल करें डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू, क्योंकि खूबसूरत बाल आपकी पहचान है। तो पता याद रखिए, हमजा जनरल स्टोर, न्यू बनोसी होटल, टांग सिटी। मोबाइल नंबर 0344-9363-780। व्हाट्सएप नंबर 0342-2648-435।
0: Welcome to Radio Amal 88.4.
3: बीमारी हक दे अवेलाजी सुनत अमल दे। अवेलाजी सुनत अमल दे।
4: उस कचेरे तासु तदा से अमराज भी चितासु वरना ढेर परेशान आयो और ढेर गर्जिदली कड़ीदली यो। ढेर गर्जिदली कड़ीदली यो।
3: नो बिल्कुल मायूस के गई माँ, मायूस के गई माँ। अल शिफा दवा खाना शवाल मार्केट टांग सिटी ता तशरीफ प्रौड़े और द हकीम मौलाना नूरुल हुदा सेवना पल इलाज तरला सकवले तरला सकवले शे।
4: और दोनों मालूमात दे पारा पदग नंबर काल कवले शे
3: 0319-55-23-404।
5: आपका अपना रेडियो, रेडियो में 88.4 नेटवर्क।
3: जमजम हेयर शैम्पू एंड जमजम हेयर ऑयल, जमजम हेयर ऑयल। द विख्तानो कुलाकड़ी यो पदवा और विख्तानो लावर कवि यो कुदरती चमक, चमक। आया स्तासु पे विख्तानों की खुशकिदा, विख्तान मो गुर्जेगी, विख्तान मो वदन कवि या मो विख्तान मातीगी। जमजम हेयर शैम्पू एंड जमजम हेयर ऑयल हम स्तासु दफारदी कुमचे स्तासु दे विख्तो खुशकी खारख पर मुकमल तो खत्म भी। नो बिल्कुल जी, हम उस जाल इंतखाबो की जमजम हेयर शैम्पू एंड जमजम हेयर ऑयल चिहाइस्त मो यो फुद्वशी। नो द मिलाविदो पता याद साथी फ्रंटियर फर्नीचर चारफाई नाइलोन मार्ट मदे मुकाबिल गली गुलाबी पंप टांग सिटी। राबता नंबर 0343-912-1745।
6: चाहतो के रंग अमन के संग, अमन रेडियो 88.4 नेटवर्क।
7: दिल से जो निकलती है दिलों तक जो जाती है, मालूमात को जगाती है, दुनिया का हाल बताती है। ये वो आवाज है जो आपके शहर में आपको अपनों से मिलाती है। ये आवाज है जो अमन की है। ये वो पैगाम है जो अमन है। रेडियो अमन 88.4 अमन का पैगाम।

0: क्या आप बालों के गिरने, खुश्की और कमजोर बालों से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़ दें, क्योंकि आ गया है डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू आपके बालों की मुकम्मल हिफाजत के लिए। कुदरती अज्जा से तैयार करदा बालों की जड़ों को मजबूत बनाएं, बालों को दे कुदरती चमक और नरमी, खुश्की और हेयर फॉल में मददगार। डॉक्टर जैन हेयर ऑयल आपके बालों को इजायत फराहम करें, जबकि डॉक्टर जैन शैम्पू गहराई से साफ करके ताजगी देता है। सिर्फ चंद हफ्तों के इस्तेमाल के बाद महसूस करें मजबूत, घने और सेहतमंद बाल। अपनी खूबसूरती में इजाफा करें और अपने बालों को दें बेहतरीन केयर। आज ही इस्तेमाल करें डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू, क्योंकि खूबसूरत बाल आपकी पहचान है। तो पता याद रखिए, हमजा जनरल स्टोर, न्यू बदोसी होटल, टांग सिटी। मोबाइल नंबर 0344-9363-780। व्हाट्सएप नंबर 0342-26-48-435।
1: चाहतों के रंग, अमन के संग, अमन रेडियो 88.4 नेटवर्क।
2: बीमारी हक दे अविलाजी सुनत अमल दे, अविलाजी सुनत अमल दे।
3: ओस कचेरे तासु तदा से अमराज भी चितासु वरना ढेर परेशान आयो और ढेर गर्जिदली कड़ीदली यो, ढेर गर्जिदली कड़ीदली यो।
2: नो बिल्कुल मायूसके गई माँ, मायूसके गई माँ। अलशिफा दवा खाना शवाल मार्केट टांग सिटी ता तशरीफ प्रौड़े और द हकीम मौलाना नुरुल हुदा सेवना पल इलाज तरला सकवले, तरला सकवले शे।
3: और द नुरु मालूमात दे पारा पदग नंबर काल कवले शे
2: 0319-55-23-404।

0: तेरे है ये जहां चीज है क्या लौह कलम मेरे है। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 की नशरिया। हमारे साथ
1: वो जो पत्थर में कीड़ों को पाल सकता है वही कोई रास्ता निकाल सकता है। वो जो कुन-फ़यकून का मालिक है एक वही तो मुसीबतें डाल सकता है। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 टांग की इस्लामी नशरियात। हमारे साथ रहिएगा।

0: It's 4 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM. क्या आप बालों के गिरने, खुश्की और कमजोर बालों से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़ दें, क्योंकि आ गया है डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू आपके बालों की मुकम्मल हिफाजत के लिए। कुदरती अज्जा से तैयार करदा बालों की जड़ों को मजबूत बनाए, बालों को दे कुदरती चमक और नरमी, खुश्की और हेयर फॉल में मददगार। डॉक्टर जैन हेयर ऑयल आपके बालों को इजाइत फराहम करें, जबकि डॉक्टर जैन शैम्पू गहराई से साफ करके ताजगी देता है। सिर्फ चंद हफ्तों के इस्तेमाल के बाद महसूस करें मजबूत, घने और सेहतमंद बाल। अपनी खूबसूरती में इजाफा करें और अपने बालों को दें बेहतरीन केयर। आज ही

0: मैं हूँ आसमान नूर वजीर फ्रॉम मंगल मेला। मैंने अपने बालों के लिए कई शैम्पू आजमाए लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिला। फिर मैंने अमन रेडियो करक पर इकराम मामू का प्रोग्राम सुना। उन्होंने एश्मा आनियन शैम्पू के बारे में बात की। जब मैंने मंगवाया और इस्तेमाल किया, माशाल्लाह उसने मुझे कमाल का रिजल्ट दिया। मैं सब बहन भाइयों को ये मशवरा देती हूँ कि अगर आप लोग अपने बाल मजबूत और सेहतमंद बनाना चाहते हो तो आज ही अपने करीबी दुकानदार से एश्मा आनियन शैम्पू मंगवाए। एश्मा आनियन शैम्पू सेहतमंद और चमकदार बालों का राज।
1: हर कदम दिखाऊं सयो छोड़ फिक्र
2: गुलोनी हो रिश्ता पुंदे हमाह के डेरी ज्याते हरा बेवे नु दुम रजर सिंगर टिक शुले यह हो रेन हो रे माँ हमाह के द डेरो कपनो क्री क्री में इस्तेमाल करल हमा ते ही से रिजल्ट और फायदा न करा और चिकला माँ उरुसा शॉपिंग सेंटर ना जान द पारा इश्म क्री क्रीम रावल नु माँ ते डेर जबरदस्त रिजल्ट राको रज गुलोनी हो रे जिसे हम जान द पारा रावड़म इश्म क्री क्रीम कतासो हम वाड़ो चिमुंग पुंदे सफा सुथरा और हिस्सा शी नयो जल जरूर।